0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्चेन्ट बीएफएम 95 मेगाहर्ज सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ एआई पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: आज तक क्षमा पे परवाना मरता था, लेकिन आज परवाने पे ये क्षमा मरने को तैयार है।

0: लो साला की संग ले लो ससुरे के संग ले लो सास के संग ले लो अपनों के संग बराए के संग खासम खास की ले लो इसकी फोटो उसकी फोटो एल्बम में तक देना मेरी फोटो छुपा के सबसे लॉकर में रख देना जो अगर किसी की नजर पड़ी फोटो पे तो सुन
1: थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी थप थप थप्पड़ मारूंगी।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

नेपालीहरूको महान पर्व विजय दशमी तथा शुभ दीपावली 2083 को पावन अवसर में सम्पूर्ण राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि सुरक्षा निकाय साझेदार संघ संस्था कर्मचारी सहयोगी महानुभावहरू शुभचिन्तक का साथ ही स्वदेश तथा विदेश में रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली बुवा आमा दाजुभाई दिदीबहिनीहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी